0: मेरो नाम बोलेंद सिंह अस खिलौना
1: का मतलब है कि शस्त्रां का खिलाड़ी शस्त्रां का तनी अस खिलौना मेरो नाम

बंद कला करे बेनती धर्म राय हो सेवक ठाकुर गणे धर्म करे मिल जाए पाप न पूर्ण गुरमुख ना

0: जे तुमरे ध्यान को।
1: गुरु गोबिंद सिंह कहते जेड़े परवतदार का नाम नित प्रति जपते ने उन्हां नूं प्राप्ति हुंदा है। साहब फरमांदे
0: जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ जाए है संत, जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ जाए है संत, अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवान, अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवान।
1: आप मुक्त मुक्त करे संसार, आप मुक्त मुक्त करे संसार,
0: नानक तिस जन को सदा नमस्कार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार।
1: नित जपिए सांस।

जित कर हर कंत ना प्रगटे पाठ नगर से ग्राम सर्व सिगार तंबोल रस सन देही सब खाम प्रभ स्वामी कंत विहूणिया मीत सज्जन सब जाम।

कंठ मिलिया हर ना हो, पोख तुखार ना व्यापई, कंठ मिलिया हर ना हो, मन बेदिया

निर्धन को पल्ले, निर्धन को पल्ले, निर्धन को पल्ले, निर्धन को पल्ले, निर्धन को पल्ले, निर्धन को पल्ले, हाय हाय, निर्धन को पल्ले, गुरु नानक दे प्यार विच कलगियां वाले दे प्यार विच इक वारी सारे आखो सतनाम अज पंजवां वीरवार है ये एक प्रकरण जो शुरू होया है खालसा करणी दा नाम है खालसा रहनी दा नाम है खालसा अमली जीवन दा नाम है खालसा गुणा दा नाम है उना गुणा विच्चों एक गुण खालसा सो निर्धन को पाले ते निर्धन नू पालना पांच तरह दा पहला चार तरह का आप जी ने चारे वीर बार सरवन कीता है केवल बोल के लंघ दे हां आज पंजवां निर्धन नू पालना महाराज जी सेवा लैन पहला निर्धन नू पालना दसवंद कढ़ना लोड़वंद दी बां फड़नी दूसरा निर्धन नू पालना के किसे दे औगण नू थोड़ा बर्दाश्त करके कलेश दा समा लंघा दे ए भी निर्धन नू पालना ए भी निर्धन नू पालना किसे दे औगण नू साध संगत जी बर्दाश्त करके ते कलेश दा समा लंघा देना बड़ी बड़ी तप है तप बहुत बड़ा तप है तीसरा निर्धन नू पालना किसे दा हक ना मारना चौथा निर्धन नू पालना रसना नाल अपने नौकर नू अपने तो छोटे काम करने वाले नू घर दे बुजुर्ग नू रसना राई मिठे लफज बोलने वो भी निर्धन नू पालना है सत्संग आज पंजवां निर्धन नू पालना मेरे महाराज सच्चे पातशाह सेवा लैण एक बारी आओ सारे माई भाई बड़े प्यार दे नाल ये पंक्तियां बोलो फिर महाराज पंजवां निर्धन नू पालन दी सेवा लैण

की संगत रहो, जौ की भूसी खाओ। जौ दी तोड़ी थोड़ा कम कटदा, कट जे गरीबी कट ले, जौ दी तोड़ी खा के गुजारा कर ले, पर नाम जपण वाले दी संगत ना छड। कबीर साधु की संगत रहो, जौ की भूसी खा, होनहार सो होए है।

दासी सुत जन बिदर सुदामा, दासी दा सुत बिदर ते फिर सुदामा, अत गरीब सुदामा, सारी दुनिया दा दलिदर इस दे कर, बाल बच्चा टुकर खान नू मंगदा बिचारे रो के रात नू भुखे सौ जांदे ते सुतियां बच्चियां नू वेख के माता पिता दियां आही निकल दियां हन। ए बदकिस्मत बच्चे किसे होर दे कर जमदे, ए साडे कर आन जमे, असी एडे निकरमे इन्हां नू पाल पोस भी नहीं सकदे, बेचारे टुकर मंगदे सौ जांदे हन, उठदे हन तां मुड़ टुकर मंगदे हन, पर रोटी कित्थों जुड़े, हर वेले विरलापदे हन, पर आखिए रोजी रोटी कित्थों जुड़े, ओ भगवान दा दिता सराफ किधर जाए। जो भगवान कृष्ण महाराज ने एक बार आखिया सी, जाओ दलिदरी, सुदामा गरीब हो गया, दलिदरी हो गया, घर वाली दी कन्नी सरोत पई, एक दिन आंधी है सुनिए भगवान सानू भुल गए सन। सुदामे ने रो के आखिया, ओ सानू भुले नहीं, आखिया की सबूत है, आखिया भुलदा उन्हां नू है जो उसनू भुला दिंदे। साध संगत बोलो श्री वाहिगुरु। कहण लगी जे सानू ओ ना भुलदे ते असी अज एडे गरीब ना हुंदे, इतनी गरीबी साडे घर विच ना हुंदी। तां सुदामे नू ओ दिन याद आ गए जिस दिन भगवान कृष्ण ते सुदामा गुरु संदीपन पास पढ़दे सन आश्रम विच, पढ़दे सन ते गुरुदेव दी सेवा करदे सन। जिवें आखिया सेवा करनी सारी, नाले पढ़ना ते गुरुदेव दी सेवा करनी, भाग उन्हां दे जागदे हन जिन्हां ने सेवा कीती है, उन्हां दे पुन्नां नूं भाग लगदे हन जिन्हां ने सेवा कमाई है, ते जिसने गुरु नानक दे घर नूं अपना घर जान के सेवा कीती, ओह गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए। इन्हां ने अपने गुरुदेव दी सेवा कीती। एक दिन शामा पईया, मां ने आख्या बच्चो लकड़ा लंगर विच हैण नहीं, भगवान चट तैयार हो गए, मां जी हुणे ले आए। सुदामे ने आख्या मैं भी नाल चलदा, क्योंकि बड़ा हित सी आपस विच, कठे खेडना, कठे पढ़ना, कठे खाना। जिसले दोनों जान लगे, माता दे मन विच विचार आया, मासूम बच्चे हन, जंगल नू जा रहे हन, शायद देर लग जाए, मत इना नू भुख लगे। लप छोलियां दी पुजे होए, सुदामे दी चोली विच पा के आखिया बचियो जे भुख लगे ता खा लैण। सुदामे ने ओ छोले कुर्ती दी जेब विच पा ले। भगवान अगां जा चुके सन, सुदामा पिछों दी जा मिले। जिस वेले जंगल विच पहुंचे, लकड़ां कटियां चुक के वापस तुरन लगे, तां नेत नाल बारिश आ गई। रात पैण तों पहलां ही बदलां ने रात कर दित्ती। इन्हां ने मन विच ख्याल कीता जे हुण टुर पए जंगल दा मसला है, शायद रस्ता भुल जाइए, हनेरी चखड़ विच चलना चंगा नहीं हुंदा, बैठ के रात गुजार लईए। तां मन विच सोचिया जे थले बैठे मत कोई जानवर आ जाए। इस करके वृक्ष ते चढ़ बैठदे हां, इक मुढ़ सी दो टहन सन, इक ते भगवान कृष्ण ते दूसरे ते सुदामा। साध संगत बोलो श्री वाहिगुरु। क्योंकि नाता है भगती दा,
ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਹੇ ਅਰਜਨ, ਮੈਂ ਭਗਤਨ ਕਾ ਭਗਤ ਹਮਾਰੇ, ਸੁਣ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਮੇਰੀ। ਹੇ ਅਰਜਨ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤਨ ਕਾ ਭਗਤ ਹਮਾਰੇ, ਸੁਣ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਮੇਰੀ, ਭਗਤਨ ਕਾਜ ਲਾਜ ਹੋ ਛੋਡੋ, ਪੈਰ ਪਿਆਦੇ ਤਾਵੋ, ਜਾਂ ਜਾਂ ਪੀੜ ਪੜੇ ਭਗਤਨ ਕੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ

आखिया अर्जुन तेरा मेरा की संबंध है आ भगती तू रथ ते बैठा होया ते मैं तेरा रथवान रथ नू चला रे ए किस दे सदके ए प्यार दे सदके भाई जिमें उना नू तारे जिमें उना दी बांफ।

दरबार ने आखिया भगवान उसके मथे का तिलक दसदा भी वह ब्राह्मण है। नहीं पाए पर नहीं ये आए निशाना, द्वार खड़ा दिज दुर्बलता स्यों देख रहे हो बसुदा अबरामा, तुहाडे सोने महल वल अखां लाई बैठा है, उड़ीक रहे है भी किस वेले दर्शन होणगे। ते ज्यो ज्यो ए नक्शा दरबान खिचद ते ओ मूर्त भगवान दे सामने आई जांदी। बड़ी काली ना बोले ना ही कुछ दस्या के कोई ना, आख्या जी दसदा हां, द्वार खड़ा दिज दुर्बलता स्यों देख रहे हो बसदा अबरामा, पूछत दीन दयाल को तामा बतावत अपना नाम सुदामा। जदों आख्या सुदामा, जब सुना भगवान ने सुदामा आए, बंसरी मोर मुकुट पीत बसन भूल गए, नंगी पैरी भज के गए ते आखन लगे मूर्खा वो मेरे मित्र नु बार खड़ा करके आए। भाई साहब आखदे हैं, दूरों देख डंडौत कर छड सिंघासन हर जी आए, पहले दे पर दखना पैरी पैके लै गल लाए। पहला ता सुदामे दियां परकरमा कीतियां ते फिर पैरी हथ लाए, ते फिर पा लई गल वकड़ी अपने नाल कदम मेल के जिस वेले लियाए ते आन के सिंघासन ते बिठाया। पहले दे पर दखना पैरी पै के लै गल लाए, सुदामे नु सिंघासन ते बिठाया ते भगवान कृष्ण आप थले बैठे। रुक्मणी राधिका नु आखिया जाओ भाई पानी लिया मित्र दे पैर धोई। वो पानी लैन गईयां ते भगवान कृष्ण बैठे हैं सुदामे दे पैरां विच। केड़ा प्यार ए प्यार वालियां दियां निशानियां, केड़ा प्यार मित्र नाल कर रहे हैं ओ बचपन दा मित्र जिस नाल कुछ समा आश्रम विच गुजारे है। भगवान कृष्ण कहन लगे सुदामे आ ऐसे हाल बेहालन स्यों की हाल हो गया है तेरा, इस हालत च मेरे को आया तू पहला क्यों नहीं आए, तेरे हालत नु देख के मेनू रोना आउंदा, आ तेरी हालत हो गई। ऐसे हाल बेहालन स्यों जे कंटक जाल परे पग तो है, जापदा तू जुत्ती पाके नहीं आए, तेरे पैर कंडिया नाल फरे हुए यार। ते सुदामा मुस्कुरा रहे क्योंकि मेरे को ता जुत्ती कोई, साध संगत बोलो श्री वाह। फरे हुए यार ते सुदामा मुस्कुरा रहे क्योंकि मेरे को ता जुत्ती कोई,